0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 5:59 হয়ে 40 সেকেন্ড। একটু পরেই সকাল 6টায় সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জয়া ভারতী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने

0: नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के

0: साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, NEET या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर

0: फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
2: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गौर के बयान को भारत के

0: अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है। चीन में कल से रोबोट ओलंपिक बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है। कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें। आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries of the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking, and collective ownership to address complex challenges and shape India's future with a long-term perspective. With Priya, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to media, Mr. Shah

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:10:58 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रसधारा में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किस विषय पर, जी ये तो बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, आज की आवाज़ क्या है? आज की आवाज़, सबसे बड़ी आवाज़ ये है कि हम सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। जी ठीक पहचाना आपने, आज की हमारी थीम रसधारा की भी यही है, आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना, एकजुट होकर के इसके विरुद्ध संघर्ष करना। दोस्तों आज पूरी दुनिया में आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है और चारों तरफ आतंकवादी समूह, नए किस्म का साइबर आतंक, बढ़ते लोन वुल्फ हमले, ये सभी हिंसा के अशुभ खतरों को बढ़ा रहे हैं। भारत ने आतंकवाद का आघात झेला है समय समय पर, और पिछले कुछ दशकों में कई बड़े शहरों में विवेकहीन हिंसक विस्फोटों ने जान माल की गंभीर हानि को देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। तो आज हम बात करने वाले हैं यही, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की कसम यदि हम खाएं और हिंदुस्तान से करते हैं प्यार, तो जरूर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकते।

जी हाँ दोस्तों, जो देश से प्यार करते हैं, जो अपने वतन पर मर मिटने वाले हैं, वो भला आतंकवाद जैसी गतिविधियों से या आतंकवाद जैसे युद्ध से कहाँ पीछे हटने वाले हैं। आतंकवाद का तो उद्देश्य ही है समाज में डर पैदा करना, लोगों को बांटना, लेकिन हमारी जो एकजुटता है और अटूट साहस है वो इसका सबसे बड़ा जवाब है। सुरक्षा बलों का सम्मान, देश की रक्षा में तैनात हमारे जो वीर जवान हैं, वो असली ताकत है हमारी, असली हीरो हैं वो हमारे, जो खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में सीना तान के। एक जागरूक नागरिक बनकर हमें हर संदिग्ध गतिविधि के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमें कंधे से कंधा मिलकर चलना होगा, तभी तो हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखा पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और हमारा हिंदुस्तान कंधे से कंधा मिलाकर चलता है हर वक्त।

जी हाँ दोस्तों, जब कंधों से कंधे मिलते हैं, कंधों से जब कदम मिलते हैं, तो दुश्मन के जो हौसले हैं वो भी हिल जाते हैं। वो जो कायराना हरकतें करते हैं वो हमारे सैनिकों के बुलंद हौसलों के सामने नापाक हो जाते हैं। दोस्तों, नाकाम करने के लिए हमने अपने आप को मजबूत किया है और एकजुट खुद को किया है। प्रौद्योगिकी और संचार में परिवर्तनों एवं प्रगति के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया सिकुड़ती जा रही है, आतंकवादियों, हथियारों और धन का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार जाना भी उनके लिए सरल होता जा रहा है। इस परिदृश्य में विभिन्न देशों के कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना ऐसी सीमा पार चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद को लेकर बेहद गंभीर रुख अपनाया। जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, जनवरी 2009 में आतंकी अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना की गई। भारत ने बहुत सारी पहलें की। इन्हीं पहलों में और भी पहलें थीं, जैसे कि भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना की गई है। आतंकवादी हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हेतु एक ऑपरेशनल हब का सृजन किया गया। दोस्तों, इसके अलावा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहले भी हुई, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी कार्यालय बने, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की आतंकवाद निरोधक शाखा बनी, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल बना। वहीं आतंकवाद के विरुद्ध भारत का वार्षिक संकल्प इंडियाज एनुअल रिजोल्यूशन ऑन काउंटर टेरर भी स्थापित हुआ। तो दोस्तों, इसके आतंकवाद से संबंधित आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन क्या हम सब इन चुनौतियों से हारने वाले थे? हमारा जो देश है एक रंगीला देश है, विभिन्न

संस्कृतियों का देश है। विभिन्न भाषाओं, बोलियों, धर्मों और हमारे संप्रदायों का देश है। और इस देश की खूबसूरती ये है कि हम सब विभिन्नता में भी एक हैं, हम अखंड भारत हैं। यही तो हमारा देश है।

जी हाँ दोस्तों, देश मेरा रंगीला। जैसे ही हम हिंदुस्तान के प्रेम में बन जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं। और जब कोई दुश्मन हमारे इसकी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारी भौहें तन जाती हैं। हम उनसे आंखें मिलाकर कह सकते हैं कि नहीं, हम डरते किसी से नहीं। दोस्तों, भारत में आतंकवाद से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ रहा है, लेकिन क्या हम उनसे डरे? नहीं। क्या हम उनसे हारे? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आतंकवाद के संगठन के संदर्भ में इसकी कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन किसी गतिविधि कुकृत्य विशेष को आतंकवादी कृत्य के रूप में हम उसको कैटेगराइज करें, ये भी मुश्किल है। तो फिर आतंकवादियों को एक ऐसी देशों के प्रति जो चुप कुछ लोग रहते हैं, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम कौन सी चोट सहें? दोस्तों, आतंकवाद का जो बढ़ता जाल है, इंटरनेट एक अपेक्षाकृत अनियमित एक अप्रतिबंधित स्थान प्रदान करता है जहां आतंकवादी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की असीमित संख्या के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वे इनके इस्तेमाल से अपने संगठन में शामिल होने और उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हजारों संभावित नए रंग रूटों को लक्षित कर सकते हैं। आतंकवाद का वित्त पोषण भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अनुसार अपराधियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। आतंकवादियों द्वारा धन के लेन देन को दान और वैकल्पिक प्रेषण प्रणालियों की आड़ में अंजाम दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कलंकित करता है और प्रणाली की अखंडता में जनता के भरोसे का क्षरण भी करता है। दोस्तों, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के विनियमन की कमी इसे आतंकवादियों के लिए अनुकूल ब्रीडिंग ग्राउंड बना देती है। इसके अलावा जैव आतंकवाद है। जी हाँ, मानव जाति के लिए जैव आतंकवाद वरदान है, लेकिन यह एक ऐसा बड़ा खतरा भी है क्योंकि जैविक एजेंटों की छोटी मात्रा को आसानी से छिपाया जा सकता है, जिसका परिवहन किया जा सकता है और इसे कमजोर आबादी पर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बाधित करने के लिए उष्ण कटिबंधीय कृषि रोगजनकों या कीटों को भी एंटी क्रॉप एजेंटों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो साइबर हमला यानी साइबर अटैक, दुनिया एक डिजिटल गांव की ओर आगे बढ़ रही है जहां डेटा को न्यू ऑयल के रूप में देखा जा सकता है। आतंकवादी किसी देश के साइबर स्पेस नेटवर्क पर अवैध हमले करते हैं और अपने राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार या उसके लोगों को डराने धमकाने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं। तो ये सब चुनौतियां हैं जो भारत सरकार को ही नहीं, विश्व भर को इसका सामना करना पड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ़।

जी हाँ, चुनौतियाँ जरूर हैं, लेकिन ना विश्व ने हार मानी है ना हिंदुस्तान ने। इससे निपटने के लिए राहें भी हमने बनाई हैं। साइबर रक्षा तंत्र का विकास किया है। साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, चाहे वह साइबर सर्च अभियान के संचालन के संबंध में हो या साइबर हमलों के विरुद्ध प्रति उपायों के दायरे का विस्तार करने के संबंध में हो। वैश्विक आतंकवाद विरोधी उपाय आतंकवाद की इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद को चुनौती देनी चाहिए, उसको परास्त करना चाहिए, साथ ही क्षमता निर्माण करनी चाहिए। भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए सेना की विशेषज्ञता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि आतंकी गतिविधियों की घुसपैठ को रोकने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा आतंकी वित्त पोषण

पर नियंत्रण किया जा रहा है। आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करने की जो आवश्यकता है उनको किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। जहां बैंकों के लिए आवश्यक है वे अपने ग्राहकों के संबंध में सम्यक तत्परता रखें और किसी भी संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करें। इसके अलावा भारत को क्रिप्टो करेंसी के विनियमन की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। युवाओं को आतंकवाद के चंगुल में फंसने से रोकना होगा। दोस्तों, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षिक प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों में इन्हें प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि युवा आतंकवादियों की तरफ आकर्षित ना हो सकें, वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित ना कर सकें। तो ये सब जो उपाय हैं उनकी रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे भटके ना। आतंकवाद के खिलाफ हम निडर होकर आंखें मिला रहे हैं।

दोस्तों, देश की एकता और साहस, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना, यही तो हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। गोली का जवाब गोले से, आतंक का मिटा देंगे नामो निशान, एकता की ताकत से गूंजेगा मेरा महान हिंदुस्तान।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

0: फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू-1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:16:03 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इशारा है आपके मनपसंद प्रोग्राम अंजुमन का और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन और आप सबों को मेरा प्यार भरा आदाब। थी वसल में भी फिक्र जुदाई तमाम शब, थी वसल में भी फिक्र जुदाई तमाम शब, वो आए तो भी नींद ना आई तमाम शब। दोस्त एक बार फिर आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन मौजूद है और आप सबों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। दोस्तों आज 21 अगस्त है और आज ही के दिन उर्दू की मारूफ मुसन्नफा इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी। 1911 या 1915 में इनकी पैदाइश हुई थी। इस तारीख योम पैदाइश को लेकर इख्तलाफ राय है। वो एक निडर अदबी आवाज़ थी जो खातिन की जिंसियत और तबकाती जद्दोजहद के इर्द गिर्द समाजी ममनुआत को चैलेंज करने के लिए मशहूर थी। कलीदी अदबी संग मेल तहरीर दी लिहाफ 1942 में उनकी मशहूर तस्नीफ में से एक है। उनकी सबसे मशहूर और अहम मुख्तसर कहानी जो खातिन की ख्वाहिश और हम जिंस की कशिश को तलाश करती है, जिसकी वजह से वो एक मशहूर उन पर एक मशहूर फहाशी का मुकदमा भी चलाया गया, जिसे उन्होंने कामयाबी के साथ मुकाबला भी किया। 1944 में एक हिंदुस्तानी औरत की पेचीदा बेदारी से खताब करने वाले एक मशहूर सवानी नावल में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें 1976 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों अंजुमन इस अजीम मुसन्निफ की यौम पैदाइश में उन्हें खराज अकीदत पेश करता है। दोस्तों यहाँ बताना जरूरी है कि आज 21 अगस्त और आज ही के दिन दहशतगर्दी के मुतासरीन को याद करने और खराज तहसिन का आलमी दिन मनाया जाता है। 2017 में यह सिलसिला अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने शुरू किया। उन्होंने दहशतगर्दी के मुतासरीन और बच जाने वालों के एहतराम के लिए 21 अगस्त को दहशतगर्दी के मुतासरीन को याद और खराज अकीदत का आलमी दिन करार दिया गया। सिर्फ 2017 में दहशतगर्दी की वजह से होने वाली अमवात में तकरीबन 3/4 सिर्फ 5 ममालिक में अमवात हुई हैं, जिनमें अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया और शाम शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के एक बयान के मुताबिक इस दिन का मकसद दहशतगर्दी के मुतासरीन को उनकी जरूरियात को पूरा करने और उनके हकूक को बरकरार रखने की इजाज़त देना है। तो दोस्तों ये था आज का आईना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक नहायती नटखट और प्यारा सा नगमा। ये फिल्माई गई थी 1962 में। फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम, जिसे गाया है गीता दत्त ने। बोल है शकील बदायूनी की और मौसिकी है हेमंत कुमार।

0: तो सौंप अभी समाप्त फरमा रहे थे गीता दत्त को। फिलहाल अंजुमन में वक्त हो रहा है आगे बढ़ने का, और आप सब जानते हैं कि आज उर्दू की मारूफ मुसन्नफा अस्मत चुगताई की यौम पैदाइश है। इस सिलसिले में अंजुमन लाया है खास पेशकश। पेश है सूफिया शिरीन की प्रोफेसर इम्तियाज अहमद आलमी की साथ खुसूसी बातचीत।
1: आदाब सामीन, आज हम उर्दू अदब की एक ऐसी बेबाक मुनफरिद और बाकमाल अदीबा के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए न सिर्फ उर्दू फिक्शन को एक नई जहत अता की बल्कि औरत के मसाइल, जज्बात, नफ्सियात और समाजी जिंदगी को भी नहायत जुर्रत और हकीकत पसंदी के साथ पेश किया। हम बात कर रहे हैं अहदसाज मुसनिफा इस्मत चुगताई की। इस्मत चुगताई उर्दू अफसाने की इन अहम आवाज़ों में शुमार होती हैं जिनके यहाँ बगावत, हकीकत निगारी, निसाई शऊर, तंजिया और बेबाक इजहार एक मुनफरिद अंदाज में जलवागर होता है। उनकी शख्सियत और फन आज भी अदबी हलकों में बहस व गुफ्तगू का मौजू है। इसी हवाले से आज हम इस्मत चुगताई की हयात, शख्सियत, फिक्र और फन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर इम्तियाज अहमद अलीमी जो पेशे से मौलिम हैं। इम्तियाज अहमद अलीमी साहब, आकाशवाणी में आपका इस्तकबाल है।
2: शुक्रिया।
1: हमारे सामेईन को आप बताएं कि इनकी इब्तदाई जिंदगी और खानदानी माहौल ने इनकी शख्सियत और अदबी फिक्र की तश्कील में किस हद तक अहम किरदार अदा किया है।
2: सामेईन, जैसा कि आप जानते हैं, इस्मत चुगताई का असल नाम इस्मत चुगताई खानम था, लेकिन ये अपने कलमी नाम इस्मत चुगताई से उर्दू अदब और उर्दू

दुनिया में मशहूर हुई। आप इनके ख़ानदानी पस मंज़र को जानेंगे तो वालिद का नाम कसीब बेग था और इस्मत चगताई के 10 भाई बहन थे मिला करके। 10 भाई बहनों में इस्मत चगताई सबसे छोटी थी। इनकी पैदाइश 21 अगस्त को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुई, भोपाल इनका आबाई वतन है, परवरिश लेकिन आगरे में हुई। इब्तदाई तालीम घर पर, जैसा कि उस जमाने में रिवाज था, लेकिन इब्तदाई क्लासेज

0: और फिर लखनऊ से बीए और बीटी की डिग्री हासिल की और फिर बीटी करने के बाद फिर पेशे तदरीस से वाबस्ता हुई। तो इतने सारे जो तजर्बात और मुशाहदात हैं ऐसे में उसको बहुत सारी जहतें देती हैं जो तख्लीकी सतह पर उनके यहाँ उनकी जो इब्तदाई तालीम और तरबियत में उनके बड़े भाई मिर्ज़ा अज़ीम बेग चगताई का काफ़ी रोल रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थी और उन्हीं की सोहबत से उनके अंदर अदबी ज़ौक पैदा हुआ था। और फिर इसमत क्या संजीदगी से उन्होंने मुल्की अदब हो या गैर मुल्की अदब का मुताला शुरू किया। गैर मुल्की अदीबों में दोस्तोवस्की, चेखोव, समरस्ट माहम और बर्नार्ड शॉ वगैरह की तहरीर से ज़्यादा मुतासिर थी। इसी वजह से जब आप देखेंगे तो जो जिनसी राहरवि की हो, कजरवी की हो, बागियाना उस तहजीब की मिसाल हो, एहतजाज की कैफियत हो, लय हो, कहीं मध्यम है कहीं तेज है, तो ये तमाम चीज़ें वो गैर मुल्की अदीबों के तवसुस से इन्होंने उर्दू अदब में पेश करके एक नई जहत और एक नए उसलूब की रविश की कोशिश की है।
1: और इसमें चगताई की तालीम व तरबियत का मरकज अलीगढ़ रहा है, तो हमें बताएं कि अलीगढ़ के माहौल और तालीम ने इनकी फिक्री तरबियत में क्या रोल अदा किया है।
0: जैसा कि अलीगढ़ के एक तहजीबी रवायत रही है और इस्मत ने वहाँ पे रह करके जो टेढ़ी लकीर का पूरा जो मंजरनामा आप देखेंगे, शिमन का किरदार हो, तो ये पूरा का पूरा जो है उनका एक सवानही नॉवेल जिसे आप कहिए उनकी जिंदगी का हिस्सा उसमें आ जाता है। तो यहाँ से लेकिन उससे पहले उनकी जो अमली जिंदगी की शुरुआत हुई, तख्लीकी सफर की शुरुआत है, वो तकरीबन 20-22 साल की उम्र में उन्होंने पहली कहानी एक फसादी के उन्वान से।
1: हमारे सामीन कराम को आप ये जरूर बताएं कि इनकी अदबी जिंदगी का आगाज कब और किस तरह हुआ, और ये आगाज बिल्कुल फितरी था, इनके अंदर की औरत की पुकार थी या बाहरी समाज का भी दखल।
0: तीनों चीजों का संगम था इनके अंदर, बाहरी समाज का जो एक तजर्बा एक मुशाहिदा था वो भी था और जो अंदर चीजें पैदा हो रही थी वो भी उसके जरिए से उन्होंने निकालने की कोशिश की। तो यहाँ से 20-22 साल की उम्र में पहली कहानी फसादी रिसाला साकी में ये पहली बार शाये हुआ, उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी रहा उनके मौत तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक संगम है जिसका जिक्र आपने किया वो इनके यहाँ नजर आता है।
1: जी, ये कहना भी मुबालगा नहीं होगा कि तानिसियत की सबसे पहली और बेबाक मजबूत आवाज हमें इसमें चगताई के मिलती है उर्दू में। आप जब इसमें चगताई के अफसानों नावेलों को पढ़ते हैं तो क्या ख्याल आता है आप?
0: सबसे पहले कि इन्होंने बधा टीका जो हमारा सिस्टम था रवायती उससे इन्हराफ किया है इन्होंने, वो मौजू की सतह पर भी और उसलूब की सतह पर भी। इसलिए जो पहली खसूसियत अगर नावल और अफसाने को पढ़ेंगे तो जो उभर कर सामने आती है वो कि बधे टिके उसूलों और रिवायती किस्म के मौजूद से इनहराफ किया है, ये पहली खसूसियत यहाँ नज़र आती है। दूसरी जो आती है रिवायती और तकलीदी उसलूब उससे इनहराफ किया है इसमत ने, रिवायती अंदाज में जो बातें कही जा रही थी इसीलिए सबसे अलग दिखती हैं। नए उसलूब की बुनियाद डाली है और उसी उसलूब पर उनका इब्तिदा भी वही है और खात्मा भी वही है। कोई दूसरा नॉवेल या अफसाना खालिस निसाई उसलूब में अभी तक सामने नहीं आया,
1: नहीं आता है।
0: पूरा नॉवेल अफसाना खालिस निसाई उसलूब का हिस्सा है। तो तीसरा, मौजूआत की पेशकश में ज्यादातर जो है वो मसाइले निस्वा को उन्होंने तरजीह दिया है, सियासी मसाइल को नहीं तरजीह दी।
1: बिल्कुल,
0: जिम्न में सियासी मसाइल आ गए हैं लेकिन मसाइले निस्वा को तरजीह दी है। और मसाइले निस्वा में क्या है, उनकी आजादी, उनके हुकूक, उनके मसाइल, उनकी ख्वाहिशात का बरमला इजहार करते हुए उनकी हिमायत की है, ये एक बिल्कुल है। उन्हें घर की चार दीवारी में क्या कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली खवातीन जिंसी और नफसियाती उलझनों को अपनी तख्लीकात में पेश करके समाज को आईना दिखाने का काम किया है, ये सबसे बड़ा काम है और समाज ने उसे आईने के तौर पर देखा है। एक और जो अहम बात सामने आती है कि इस्मत के यहाँ जो किरदार हैं वो सरेंडर नहीं है,
1: सरेंडर नहीं है बिल्कुल,
0: बल्कि बागियाना और एहतजाजी जहन लेकर के सामने आती है और इसी जहन साजी में न तो इस्मत से पहले कोई नजर आता है न इस्मत के बाद कोई नजर आता है जो ख्वातीन में इस तरह के रुझान को पेश कर सके, उनके मसाइल को। बेशतर किरदारों का ताल्लुक क्या है, नौजवान लड़के और लड़कियों से है।
1: बिल्कुल,
0: उनके यहाँ जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई नॉवेल या अफसाना इस तरह का नहीं मिलेगा जहाँ मरकजी किरदार के तौर पर किसी बूढ़े और ज़ईफ़ुल उम्र को पेश किया गया हो, खातून हो, खातून में ज़ईफ़ुल उम्र का उस तरह का मरकजी किरदार सामने आता। जितने भी हमने अब तक के उनके नॉवेल

0: और अफसाने को पढ़े हैं, कोई किरदार ऐसा नहीं मिला जो बिल्कुल मफलूकुल हाल हो और बहुत ज़ईफुल उम्र हो और उसको मरकजी किरदार बना करके, क्योंकि इस्मत का एक पूरा मतमह नज़र था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस्मत के यहाँ एक और अहम पहलू जो उभर कर आता है कि जो भी खातून या लड़कियाँ जो हैं वो बागियाना रवैया और एहतजाजी उसलूब लेकर आती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मनफी होता है, बल्कि वो मुस्बत कदरों की तरफ आपको ले जाता है और समाज को एक आईना दिखाता है कि आप इन चीज़ों को सोचिए और इस पर फैसला कीजिए कि क्या वो गलत है या हमारा समाज या हमारी सोसाइटी गलत है या जो हमारे बधे टिके उसूल हमने बना रखे हैं खुद साख्ता वो गलत हैं। इस पर इस्मत के एक चोट करती हैं और सवाल कायम करती हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है और आज हम इसीलिए उस पर बात भी कर रहे हैं।
1: बात भी कर रहे हैं। इसमें चुगताई की फिक्र पन पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इनको सिर्फ निसाई अफसाना निगार या तानीसियत के अलंबरदार कहना इनके फन को महदूद करना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तरक्की पसंद नजरियात की हामिल थी, तरक्की पसंद तहरीक से अमली तौर पर जुड़ी हुई भी थी।
0: आप तरक्की पसंद तहरीक चूंकि एक बधा टिका उसूल था, एक मैनुफेस्टो था, अदीब को उस दायरे में महदूद होकर के लिखना था और उसमें एक बुनियादी मसला जो था कि औरत के मसाइल की पेशकश,
1: जी हाँ,
0: ये बुनियादी मौजू था कि तरक्की पसंदों के कि जो जैसा है अदीब को जानिबदार होकर के पेश करना है, गैर जानिबदार होकर नहीं पेश करना है। तो इस्मत ने इस नज़रिए के हवाले से जो ख़वातीन के मसाइल हैं जानिबदारी के साथ एक तरफा मसाइल को तरक्की पसंद चुकी हैं, वो हमसर रही हैं और उसी ज़माने में लिख भी रही हैं, तो उस नज़रियात को फॉलो करते हुए भी लिख रही हैं और एक ख़वातीन में एक बड़ा नाम उभर करके तरक्की पसंद
1: वही तो आती
0: वही आती है। उसके बाद कोई खातून ऐसे चीदा चीदा हैं जिनको आप कहीं कहीं जुमलों में तलाश कर सकते हैं, लेकिन पूरे नॉवल और अफसाने में आप तलाश नहीं कर सकते हैं।
1: बहुत शुक्रिया अलीमी साहब, आपके साथ इस्मत चुगताई की फिक्र व नजरियात के ताल्लुक से दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। मुनासिब मालूम होता है कि अब इनके फन पर इनकी तख्लीकात पर भी बात की जाए। इस्मत चुगताई फिक्शन राइटर हैं, इनके कई अफसानवी मजमूए और नॉवल शाया होकर दादो तहसीन हासिल कर चुके हैं। यूँ तो लातादाद अफसाने उन्होंने खल्क किए हैं, लेकिन अफसाना लिहाफ को इस्मत चुगताई के फन में संग मील कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक अफसाना नहीं हमारे मुआशरे का वो आईना है जिसे आज भी मुआशरे का ठेकेदार नजरें चुराता है। आज भी औरत को एक जिंदा शय अपनी तमाम जरूरियात और ख्वाहिशात के साथ कबूल नहीं करता। लिहाफ के हवाले से आप इस्मत चुगताई की फिक्र फन पर रोशनी डालिए और इस अफसाने पर हुए एतराजात पर भी थोड़ा हमारे सामने इनको आगाह कीजिए।
0: देखिए, आपने इस्मत के मारूफ अफसाना लिहाफ की बात की है
1: जी।
0: लिहाफ उस जमाने में भी कंट्रोवर्शियल रहा, आज लिहाफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैसियत नहीं रख के। लिहाफ क्या है? लिहाफ दरअसल एक जिस्म को गर्म करने का एक आला है, लेकिन यहाँ पे जिंसी नासूदगी का जो इजहार उसके जरिए से इस्मत ने किया और जिस बयानिया लहजे में किया, दरअसल कारी की निगाह वहाँ जाती है। जब प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी इस अफसाने को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बताओ मियाँ, तुमने लिहाफ खोला तो क्या पाया? लिहाफ खोला तो कुछ नहीं पाया,
1: कुछ नहीं था।
0: तो लफ्जों के बयानिए से उन्होंने लिहाफ को इस तरह से बना दिया कि लग रहा है कि लिहाफ के अंदर कुछ हो रहा है। तो ये एक तरह से जिंसी नासूदगी और जिंसी घुटन का बेबाकाना इजहार जो कुछ हरकतों की वजह से वहां पे अमल में आता है, लेकिन उसको आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। वो देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन वहां पे चूंकि एक जब मान लिया गया कि ये एक जिंसी अफसाना निगार हैं, इसलिए लोगों ने जिंस के हवाले से उनके इस लिहाफ को भी देखने की कोशिश की और बाकायदा तौर पर कहा भी कि लिहाफ एक जो है जिंसदा अफसाना है, और उसमें एक ये भी कहा गया कि एक तरह से लेस्बियन का कल्चर इसको पेश किया गया
1: जी।
0: तो ये तमाम सवालात होते रहेंगे। कारी पर ये है कि वो पढ़े और फिर वो फैसला करे कि ये किस जुमरे में हम रखेंगे इसको, क्योंकि सबकी तफहीम, सबके तजर्बे और सबके नज़रियात पढ़ने के बाद अलग अलग होते हैं। वो अफसाना पढ़कर हमारे ऊपर कोई दूसरा तासुर तारी होगा, और कोई एक 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जब पढ़ेगा
1: जी,
0: तो उसके ऊपर दूसरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ये दोनों की रेडिबिलिटी पर भी मुनहसिर करता है कि लिहाफ को हम किस उसमें रख करके देखना चाहते हैं। यहाँ पे

0: उनके यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं कि किन किन मसलों का, और इन मसाइल, ये तमाम मसाइल जो है, जिनसे घुटन के मसाइल हों या जिनसी नासूदगी के मसाइल हों, तो उसकी तस्कीन का ज़रिया क्या होता था? कोई उस तरह की चीज़ें तो दस्तियाब थी नहीं, घर के चार दीवारी में औरत कैद थी, बाहर जा नहीं सकती थी, करे तो क्या करे। तो यहाँ पे इस्मत ने वो तमाम सरहदों को तोड़ने की कोशिश की है, जिसका नमूना आपको यहाँ पे लिहाफ में भी दिखता है या दूसरे अफसानों में भी दिखता है।
1: और ये इस्मत का फ़न है, उनका इजहार बयान की कुदरत है कि उन्होंने सब कुछ कह कर भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन इस्मत चुगताई के कमाल की फनकारा थी, जिस पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है, जहाँ उन्होंने मुतद्दद अफसाने मुतवस्त वाला घरानों की खवातीन की जिनसी घुटन, नासुदा जज्बात और बागियाना अमल को कलमबंद किया है, वही उनका शाहकार अफसाना चौथी का जोड़ा है, जिसकी मरकजी किरदार जो है ना तो बगावत करती है, ना ही नासुदा जज्बात के हाथों मगलूब होकर कजी की राह अख्तियार करती है। वो तो हसरत यास की मूरत, समाज की ठुकराई हुई बेवा माँ की हसरतों की जिंदा लाश है, जिसकी ख्वाहिश है कि इसकी बेटी का घर बस जाए और वो भी चौथी का जोड़ा पहने। अली में साहब, आप हमें बताएं कि किस तरह इस्मत चुगताई ने चौथी का जोड़ा और इस तरह के दूसरे अफसाने कलमबंद किए, जो समाज के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं मिल पाया।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, चौथी का जोड़ा एक तहजीब की बाजियाफ्त का मसला है
1: जी।
0: और ये आज मशरकी यूपी और बिहार के इलाकों में आज भी चौथी की रस्म अदा की जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमारा ये है, वो लड़का जो था पेइंग गेस्ट के तौर पर आपने रखा ना
1: जी,
0: अब हम उससे तवक्कुआत वाबस्ता करके अगर ये रखेंगे कि हमने इसको इतने दिन हम इसको अच्छा अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे
1: तो ये हमारी तवाज़ा इतने करेंगे, खातिर
0: तवाज़ो करेंगे तो हमारी बेटी से शादी कर लेगा, यही गलती यहीं पे ये होती है, जिसकी वजह से सब कुछ एक दूसरे पसमंजर में चला जाता है और आखिर में जब रिश्ता नहीं होता है तो उसकी माँ दारे फानी से कूच कर जाती है। कोबरा को उकसाया भी नहीं गया, तो एक तरह का ये तहजीब है और उस तहजीब में बध करके, चूंकि कह नहीं सकते बराह रास्त, चूंकि लड़कों से डायरेक्ट कहने का मसला होता नहीं था,
1: बिल्कुल
0: उनके घर से बात करनी होती थी, लेकिन वहाँ पे जो ख्वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं वो भी आप उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे।
1: बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपकी गुफ्तगू से हमारे सामने के इल्म में इजाफा हो रहा है। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करें इनके नावलों की। इम्तियाज़ साहब, मुख्तसर तौर पर हमें बताएं कि उनके नावलों के मौजूआत क्या थे, उनके उनवानात क्या थे और उन्होंने खास क्या उसलूब अपनाया था अपने नावलों में।
0: जी, पहले तो ये उनका नावल, पहला नावल था ज़िद्दी, दूसरा टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, फिर जंगली कबूतर, दिल की दुनिया, अजीब आदमी और फिर सबसे आखिरी नावल एक कतरा खून।
1: जी,
0: एक कतरे खून, ये तमाम नावल हैं और ये तमाम नावल जो है, आप शुरू करते हैं ज़िद्दी से तो इस पर फिल्म भी बनी है
1: जी हाँ।
0: और इन तमाम नावलों के अगर मौजूआत की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे मौजूआत आपको हैं, आपको इश्क का मौजू भी नज़र आएगा, तकसीम हिंद का मौजू भी नज़र आएगा, तकसीम हिंद के बाद जो जो हिजरत का कर्ब है वो भी नज़र आएगा
1: जी हाँ,
0: ये तमाम चीज़ें, उसके बाद ख़ानदानों की जो चहल पहल उसमें थी वो भी नज़र आएगा, तकसीम हिंद के बाद उभरने वाली जो शहरी ज़िंदगी की गलत तकसीम हुई है उसका भी मंजरनामा आप यहाँ इसमें देखेंगी। एक बहुत अहम चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया, औरत को मर्द की मिल्कियत तसव्वुर किया जाना, ये उसका जिक्र यहाँ पे किया, लेकिन वहाँ से इस्मत ने उससे बगावत भी कराया है
1: जी।
0: कि मैं औरत मर्द की मिल्कियत नहीं है,
1: बिल्कुल
0: इससे एहतजाज कराया है नॉवेल में।
1: हाँ।
0: और घुटनज़दा मुआशरे में जो पैदा होने वाला जिंसी वबात और उसकी तस्कीन के लिए जो गैर फितरी अंदाज अख्तियार करना, इस मौजू को भी पेश किया, जैसा कि आप अफसाना लिहाफ का जिक्र आया
1: जी।
0: या उसके अलावा उनके नावलों में शम्मन का किरदार के में जब आएगा टेढ़ी लकीर में, या दिल की दुनिया में रफिया हसन का जिक्र आएगा
1: जी।
0: ये या ज़िद्दी में जो है पूरन और आशा का किरदार नज़र आएगा, महेश और महेश का किरदार नज़र आएगा, तो इसमें जो है यहाँ पे ये मौजूआत उनके यहाँ हावी नज़र आते हैं। और दूसरा, अब इसके जो पसपर्दा
1: जी,
0: आप और सारे मौजूद तलाश कर सकते हैं, जैसे सियासत का मौजू हो, मज़हब हो, मज़हब पर चोट की है उन्होंने, ज़मींदारी उस ज़माने में थी तो ज़मींदारी के मौजू को भी तलाश किया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है और

0: उनकी फिर बाहमी लड़ाई और फिर उनमें सुलहो आश्ती का ये मौजू भी वहाँ पे नज़र आएगा। नौकरी हो, तालीम हो, ये उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ नज़र आती है वो जिसे खालिस निसाई लबो लहजे में
1: अच्छा
0: उन्होंने पेश किया है
1: वो उनके नावलों की जो जुबान है खास,
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: बिल्कुल ये सारी चीज़ है। मैं एक कोसना के तौर पर जो बागियाना एहतजाज की है उसकी मिसाल दूंगा कि वहाँ पे उन्होंने उनकी माँ ने कहा कि ये तू किसे कोस रही है
1: जी,
0: तो उसका जवाब क्या होता है उस लड़की का कि बाकर हुसैन तुम्हारे चहेते दामाद को, हरामजादे को, कुतिया के जने को, उसे दोजख की आग जलाए, कब्र में कीड़े पड़ाए, वो दुपट्टा फैलाकर घूम घूम कर कोसने लगी। अब इसमें देखिए जो डिक्शन इस्तेमाल किया है ये खालिस गालियां हैं, हिंदुस्तानी गालियां। के अलावा जो है एक और अहम चीज़ है कि आज जो बच्चियां हैं बोझ बन चुकी हैं माँ के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, तो उसका जिक्र क्या करते हैं वहाँ पे, यहाँ बागियाना एहतजाज लेकर उभर कर सामने आती है कि एक और कहती क्या है कि तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ तो मुझे जिंदा दफन कर दो, और कुत्ते की मौत क्यों मानना चाहती हो, मैं ये जहर नहीं पीऊंगी, हरगिज नहीं पीऊंगी। वो फिर उसके बाद में ये जो है उसने जिक्र किया, तेरा दिमाग खराब हो गया है मुर्दार। हाँ, दिमाग खराब ना होगा तो और क्या होगा, इंसान हूँ पत्थर नहीं, 15 बरस की उम्र में मुझे भाड़ में झोंक दिया, सुहाग की मेहंदी भी फीकी ना पड़ी थी कि सात समुंदर पार चला गया, वहाँ उसे सफ़ेद नागन डस गई, पर ये तो बताओ कि मैंने कसूर क्या किया था। अब इस्मत जो है यहाँ पे दिल की दुनिया में किरदार से ये सारी बातें कहलवा रही हैं और एक तरह से बगावत पर आमादा कर रही हैं, और ये खालिस निसाई लहजा है, इसको किसी खातून नावल निगार या मर्द नावल निगार के यहाँ नहीं आएगा। और ये बिल्कुल तजर्बे और मुशाहदे पर मबनी है कि ये तमाम कोसने जिसको कहते हैं हम कोसना, कि जब कोई चीज होती है तो
1: वो
0: उसका इस्तेमाल करती हैं बहुत ही आराम से। तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ उसमें नज़र आएंगे, आला तबके की ज़िंदगी हो या मुतवसित तबके की ज़िंदगी हो, निचले किरदार हों, आप ज़िद्दी में देख सकते हैं, सौदाई में देख सकते हैं, मासूमा से नीलूफर बनने का सफ़र कैसे अख्तियार किया।
1: चलिए, आपकी नावल की जब बात हो ही रही तो मैं थोड़ी सी जिक्र टेढ़ी लकीर पे करना चाहूँगी कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या टेढ़ी लकीर जो उनका नावल है, बहुत मशहूर नावल है, वो किसी हद तक इसमें चुगताई की आप बीती है, उनके सवाना ही नावल है?
0: दरअसल मुझे जहाँ तक लगता है जितना मैंने पढ़ा और वो तमाम तजर्बात और मुशाहदात जो हॉस्टल की ज़िंदगी में ख़ास तौर से ख़वातीन के उसमें, चाहे वो उनका उनके नावलों के जो किरदार थे उसमें टेढ़ी लकीर के, बड़ी आपा का हो, मिस चरण का हो, मंजूबी का हो, राय साहब का किरदार हो, रोनी टेलर का हो, इफ्तिखार, इल्मा, रसूल फातमा, सादत, नजमा, अज्जू, नूरी, कुंदन, कुद्दन, बिल्कीस, सजली मजली, ये सारे किरदार क्या हैं? ये दरअसल उस चार दीवारी के अंदर रहने वाले वो किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और जो पेशे तदरीस से वाबस्ता होने के दौरान उन्होंने महसूस किया, कहीं उस्तानी के रूप में, कहीं एक लड़की के रूप में। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में लिखा है और ये एक तरह से उनको सवानी नावल मालूम होता है, ये हम कह सकते।
1: हमारी गुफ्तगू अपने अख्तितामी मरहले में पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें चुगताई का फन आज भी हमें सोचने और सवाल करने पर मजबूर करता है। आखिर में आपकी नज़र में इसमें चुगताई के अदबी मीरास का सबसे अहम पहलू क्या है और आज की नई नस्ल को इसमें चुगताई को क्यों पढ़ना चाहिए?
0: इसलिए हमें इसमें चुगताई को पढ़ना चाहिए क्योंकि उस आज भी वो तमाम मसाइल, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सवालात आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे इस्मत ने कायम किए थे। एक और अहम सवाल है जो इस्मत ने उठाया था, क्या औरतों को उस ज़माने में उनके जायज़ हकूक़ मिल रहे थे? तो इस तरह के जो सवालात हैं वो, और एक और अहम बात जो है आखिरी सवाल का ये कि समाज और मुआशरा जो है क्या उन्हें आज भी मसावी हकूक़ देता है कि उन्हें मसावी हुकूक नहीं देता? सिर्फ कागज़ों में हम उनके लिए मसावी हुकूक की बात करते हैं, ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो हम फिर वही इस्मत की आवाज़ लेकर के उठते हैं और उसके हुकूक की बात करते हैं, लेकिन दरपर्दा फिर हम उसका इस्तेहसाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस्मत को हम इसलिए पढ़ेंगे और इन्हीं सवालों पर हम गौर करेंगे कि क्या इस्मत ने क्यों बगावत किया اور کیوں وہ رویہ اختیار کیا؟

0: और हमें उस पर उकसाया सोचने के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए, ताकि हम समाज को, मुआशरे को एक नई राह और एक नई रोशन पर विकसित भारत की तरफ ले जा सकें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफ़ैद किया। इसके साथ ही आज की ये गुफ्तगु हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये गुफ्तगु सामईन को इसमें चुगताई के फ़न को नए जावियों से पढ़ने और समझने की तरगीब देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलीमी साहब।
0: बहुत शुक्रिया।
2: जिंदगी में कभी किसी को अपने ख्वाबों का हिस्सा बनने ना दो। आज इसमें चुगताई की इस मशहूर कॉल के साथ आज की उनकी इस खास पेशकश को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप अभी समाप्त फरमा रहे थे सूफिया शरीन की प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद आलमी के साथ खसूसी बातचीत। तो संजुमन वक्त हो रहा है एक खूबसूरत नगमा सुनने का। सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन से ये प्यारा सा नगमा, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन और मौसीकी है राहुल देव बर्मन की।

दोस्तों, आप अभी समाज फरमा रहे थे निहायत ही नटखट सा नगमा किशोर कुमार की आवाज में। तो अंजुमन ने वक्त हो रहे हैं मंजरनामा का, और आज हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम पर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय स्कीम एक मरकजी हुकूमत की पहल है जो जुलाई 2004 में पसमानदा और पसमानदा बरादरियों की 9 उम्र लड़कियों के लिए रिहायशी स्कूल कायम करने के लिए शुरू की गई थी। यह सन्फ और खानदगी के फर्क को पूर करने के लिए पूरे भारत में तालीमी तौर पर पसमानदा ब्लॉक्स पर तवज्जो मरकूज करता है। दोस्तों, कलीदी खसूसियात और मकासद हदफ ग्रुप में SC ST यानी दीगर पसमानदा तबकात, OBC और अकलियती बरादरियों की 10 से 18 साल की लड़कियों को इस स्कीम से फैजयाब किया जाता है।

एसटी ओबीसी और अकलियती ग्रुपों के साथ बकिया 25% गुर्बत की लकीर से नीचे यानी बीपीएल खानदानों के लिए तरजीह दी गई है। तालीमी दायरा कार असल में अपर प्राइमरी लेवल्स यानी क्लास 6 से 8 के लिए इस स्कीम को समागर इच्छा फ्रेम वर्क में जम किया गया है और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्लासों का अहाता करने के लिए अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में स्कीम 2004 में शुरू हुई थी, लेकिन इस स्कीम में एससी एसटी ओबीसी या अकलियती बरादरियों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 75% सीटें रिजर्वेशन फ्राहम की गई और बकिया 25% के लिए बीपीएल यानी गुर्बत की लकीर से नीचे खानदानों को लड़कियों को तरजीह दी गई। मुश्किल हालात में वो लड़कियां जो अपर प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने से कासिर हों, गैर मामूली मामलात में दाखिला ले सकती हैं। इस स्कीम के तहत 12वीं प्लान में सुरक्षित सर्वशिक्षा के तहत यकुम अप्रैल 2007 से जम कर किया गया था। सर्वशिक्षा अभियान खुद स्कूली तालीम की नई शुरू की गई मरबूत स्कीम है। दोस्तों, इस तरह ये स्कीम अब 10 से 18 साल की उम्र की लड़कियों की पसमानदा ग्रुपों की लड़कियों तक की रसाई और मेयारी तालीम फराहम करती है। जो क्लास 6 से क्लास 12 तक जमात तक पढ़ने के ख्वाहिशमंद तुलबा व तालबात हैं, उन्हें ये सहूलियत फराहम की जा रही है। दोस्तों, इसकी इतला ऑनलाइन पोर्टल में भी मौजूद है। आप अभी समाप्त फरमा रहे थे मंजरनामा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम पर हमारी खास पेशकश। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम साथिया, जिसे लिखा है गुलजार और मौसीकी है AR रहमान की।

दोस्त आप अभी समाप्त फरमा रहे हैं फिल्म आशिकी 2 से अरिजीत सिंह को। दोस्त अंजुमन ने वक्त और आपसे इजाजत लेने का, मैं तलत सलाउद्दीन आज के लिए इजाजत लेती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप कुछ ही देर में फरमाएं समाप्त।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:50 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा है से। चर्चा है में आज हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। शुक्रवार 21 अगस्त को पूरा देश आतंकवाद के पीड़ितों और बचे हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उन्हें याद करने के लिए एकजुट होगा। इस दिन आतंकवाद से प्रभावित लोगों को याद करने और उन्हें सम्मानित करने, पीड़ितों और बचे हुए लोगों को विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, जनता को शिक्षित करने और पीड़ितों और बचे हुए लोगों की कहानियों को व्यापक रूप से प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महासभा ने अपने प्रस्ताव 72/165/2017 के माध्यम से 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए उन्हें सम्मान देना, याद करना और श्रद्धांजलि अर्पित करना है। साथ ही उनके मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा और बढ़ावा देना है। 2026 में स्मृति के माध्यम से उपचार आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि के 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 का विषय दिया है स्मृति के माध्यम से उपचार। विषय के तहत एक उच्च स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन भी करेगा। स्मरण और स्मारक बनाने के कार्य केवल अतीत को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ितों की गरिमा, पहचान और दीर्घकालिक उपचार के लिए आवश्यक है। कहानियों को संरक्षित करके और सहानुभूति को बढ़ावा देकर सामूहिक स्मृति सामाजिक एकता को मजबूत कर सकती है और भविष्य में होने वाली हिंसा की रोकथाम में योगदान दे सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए स्मरणोत्सव सम्मानजनक, पीड़ित केंद्रित और आघात सूचित होने चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे पीड़ितों और को और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना उनका सम्मान कर सके। अंतर्राष्ट्रीय दिवस श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कार्रवाई का स्मरण और स्मारक बनाने के कार्य केवल अतीत को याद करने तक सीमित नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ कार्रवाई का आह्वान भी करता है। यह पीड़ितों और जीवित बचे हुए लोगों के साहस, लचीलेपन और नेतृत्व का सम्मान करता है। साथ ही सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षकों, मीडिया पेशेवरों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को स्मरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो पीड़ितों के अधिकारों को बनाए रखता है और उपचार और रोकथाम में योगदान देता है, आह्वान भी करता है। यह पीड़ितों और जीवित बचे हुए लोगों के साहस, लचीलेपन और नेतृत्व का भी सम्मान करता है। तो दोस्तों हमने आज बात की चर्चा की आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे कार्यक्रम सुरभि और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। सुनते रहिए कार्यक्रम सुरभि।

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से आज आइए हम पहल पर प्रकाश डालते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत 30/6/2025 तक कुल 16,912 जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। मार्च 2027 तक 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। इस योजना के

अंतर्गत 2110 दवाइयां और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जिसमें हृदय रोग, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी और पाचन संबंधी दवाएं और पोषक तत्व जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मकों और टीकों को छोड़कर राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। JAK में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण IT आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय गोदाम, 4 क्षेत्रीय गोदाम और देश भर में नियुक्त 39 वितरक शामिल हैं। 400 तेजी से बिकने वाले उत्पादों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है। इसके अलावा योजना के उत्पाद समूह में सबसे अधिक बिकने वाली 100 दवाओं और बाजार में तेजी से बिकने वाली 100 दवाओं सहित 200 दवाओं के लिए न्यूनतम स्टॉक अनिवार्य किया गया है। इस स्टॉक अनिवार्यता के तहत जन औषधि केंद्र स्वामी अपने द्वारा रखे गए 200 दवाओं के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन राशि का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। सरकार ने सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है, जिससे परिवारों द्वारा स्वास्थ्य व्यय में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल स्वास्थ्य व्यय को 62.6% हिस्सा स्वास्थ्य व्यय पर खर्चा होता है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 39.4% हो गया है। जन औषधि दवाओं की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने और इस प्रकार जेब से होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों को खोलने में सरकार ने फ्रेंचाइजीज मॉडल अपनाया है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों सभी से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की वेबसाइट के माध्यम से देश भर से विभिन्न ब्लॉकों और तहसीलों सहित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, वेबसाइट है www.janaushadhi.gov.in। और दोस्तों, ये हमने बात की जन औषधि केंद्र की कार्यक्रम पहल के अंतर्गत। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

ये गीत आपने सुना लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह, शादाब फादरी और अल्तामिश फादरी की आवाज़ों में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। सुनते हैं अगला गीत। माफ़ कीजिए दोस्तों, आपने ये गीत सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म आवारापन 2 से। गीतकार रश्मि विराग संगीतबद्ध किया अमाल मल्लिक ने। और अब सुनेंगे हम गीत फिल्म, जी हाँ ये साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में गीत है, फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, और अरिजीत सिंह ने साथ दिया है, साथ में शादाब फादरी और अल्तामिश फादरी।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनवाते हैं फिल्म सिर्फ तुम से ये गीत। अमीन साबरी, फराद साबरी, जसविंदर नरूला और साथियों की आवाज़ों में गीतकार समीर, संगीतबद्ध किया नदीम शवन ने। और इसी गीत के साथ आपकी दोस्त सविता आपको सुनवाते सुनवाते आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी 30 तारीख को एक बार फिर से। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: because of this love that we have for each other. We'll be back once again after this short break. Yes, I'll go in for a breather from 1 to 110 where you'll be connected to Delhi for the news, and then we'll be back with more music with a bang right from 110 to 12. So do stay tuned on the Sansarita channel of Akashvani, Kolkata.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,500

0: Morning, after undergoing a medical examination at a private hospital in Islamabad, Khan was moved to Shifa International Hospital after midnight in compliance with the Supreme Court's order on August 18th, directing that he be transferred there within 2 days after a medical report submitted before it said he was suffering from level 3 plus anxiety. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh for today, the IMD forecast. Heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Uttarakhand and West Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rain has disrupted life across eastern Madhya Pradesh with several rivers in spate and flood-like conditions in many areas. A report.
1: A weather system active over eastern Madhya Pradesh has caused heavy rain in several districts with flood-like conditions in many areas. Rivers and streams are in spate in Dindori, Panna, Rewa, Satna and Chhatarpur. Several rivers including Mandakini and Narmada are flowing above the danger mark. The weather department has issued a heavy rain alert for 16 districts including Niwadi, Tikamgarh and Chhatarpur today. These areas may receive 4 to 8 inches of rain in the next 24 hours. Rainfall is likely to gradually move towards central and western Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: In badminton, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit and fighting spirit, coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yifan and Tang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया।

0: 20 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद

0: एक वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया।

0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
1: मध्य प्रदेश के

0: मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संजयता प्रचार तरंगे मीडियम वेव 297.6 मीटारे अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন ভীম পলশ্রীর আগে খেয়াল, শিল্পী অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য।

0: আকাশবাণী কলকাতা। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। শুরু হলো সঞ্চয়িতার দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 44 সেকেন্ড। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। পরবর্তী অনুষ্ঠান সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নবীন সাক্সেনা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21:26। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम उर्वशी में। और उर्वशी के अंतर्गत आज यानी शुक्रवार की शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है सुरुचि। तो दोस्तों, सुरुचि के अंतर्गत आज का हमारा विषय क्या है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका गुप्ता, लेकर कार्यक्रम जिसको आप करते हैं बेहद पसंद। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्यक्रम उर्वशी की। और उर्वशी के अंतर्गत आज सुरुचि में हमारा विशेष जो विषय है उसके बारे में होंगी बातें, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी एक खास रेसिपी के विषय में भी। लेकिन कौन सी है ये रेसिपी ये आपको बताऊंगी इस गीत के ठीक उस पार। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये गीत जो कि है फिल्म दावते इश्क से।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:28 और आज दावते इश्क में कौन सा व्यंजन परोसा जाएगा उसके बारे में हो जाए बातें। उर्वशी के अंतर्गत सुरुचि में आज हम बातें करने जा रहे हैं ताल बीना के विषय में। तो दोस्तों, ताल बीना आखिर होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, इन सभी विषयों में होंगी आज के कार्यक्रम में बातें। फिलहाल आप सभी को बता दें कि दोस्तों, खाने की दुनिया में जितने व्यंजन बने हैं उन सभी की दुनिया में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। सदियों पुरानी अपनी परंपरा, संस्कृति और भावनाओं की कहानी लेकर आगे चलते हैं और आज हम एक ऐसे ही

पारंपरिक व्यंजन की बातें करेंगे। तालबीना एक ऐसा व्यंजन है जिसका नाम सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन तालबीना बेहद ही सरल सामग्री से तैयार होने वाला एक पारंपरिक जौ का व्यंजन है। जौ का जो आटा होता है, इसके साथ दूध या फिर पानी और स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिठास, बस इन्हीं कुछ साधारण सी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्रियां हैं, इन सभी के साथ

हुए जो जौ का आटा होता है उसके साथ एक नरम दलिया जैसा बनने वाला व्यंजन है। इसका नाम अरबी शब्द लबन से जुड़ा हुआ है और माना जाता है इसका संबंध दूध से है। दोस्तों, इसकी पारंपरिक तैयारियों के विषय में अगर बात की जाए तो दूध का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसके साथ ही ये आमतौर पर हल्की मुलायम और खीर या पतले दलिये जैसी देखने में होती है और इसे मीठा बनाने के लिए शहद या फिर और भी कोई आप अगर नेचुरल मिठास वाली चीजें ले सकें, नेचुरल स्वीटनर ले सकें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें खजूर, किशमिश जैसे चीजें भी डालते हैं और सूखे मेवे या फिर दालचीनी जैसी चीजें भी इसमें मिलती हैं। दोस्तों, एक आपको ये बात बता दूं कि जो ये मूल व्यंजन है ये घरों में आसानी से बनाया जा सकता है और अगर इसके इतिहास के बारे में बताया जाए तो तालबीना का इतिहास इस्लामी परंपरा से जुड़ा हुआ है और हदीस साहित्य में तालबीना का उल्लेख मिलता है और साथ ही इसे विशेष रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर है या फिर बीमार है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है ताकि उन्हें थोड़ी एनर्जी जो है वो मिल सके।

दोस्तों, फिर हमारी जो बातें हो रही थी उसके अनुसार तालबीना में जौ का इस्तेमाल होता है। जौ दुनिया की प्राचीन अनाज फसलों में से एक माना जाता है और साथ ही कई सभ्यताओं में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और पेय पदार्थ के रूप में भी ये पाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी जौ लंबे समय से लोगों का आहार जो है उसका हिस्सा बना रहा है। तो भारत में भी जौ का अपना एक बहुत लंबा इतिहास है। भारतीय खानपान में जौ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से विभिन्न रूपों में किया जाता है, इसीलिए तालबीना हमें बहुत ज़्यादा, एक तरह से हम बोल सकते हैं, पारंपरिक व्यंजन के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय और जो उपलब्ध अनाज हैं उन उपलब्ध अनाजों के साथ ये विकसित होता है। तो दोस्तों, अगर बताया जाए कि तालबीना आखिर है क्या, कैसे बनता है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, कितना किसका क्या की क्वांटिटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप सभी के लिए गीत। तो दोस्तों, एक गीत के ठीक उस पार आप सभी को बताऊंगी कि आखिर तालबीना बनाया कैसे जाता है और कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं इस व्यंजन को बनाने में। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत आप सुनेंगे फिल्म किल दिल से अरिजीत सिंह के साथ निहिरा जोशी देव पांडे की आवाज़ में।

वेल फ्रेंड्स, अब फिलहाल आप सभी जो गीत सुन रहे थे अभी ये था अरिजीत सिंह के साथ नेहरा जोशी देशपांडे के आवाज़ में। और अब हम आपसे बातें करेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है हमारी आज की जो खास रेसिपी है सुरुचि के अंतर्गत, उर्वशी में। सुरुचि में आज हम बातें कर रहे हैं तालबीना के विषय में। और दो लोगों के लिए ये रेसिपी जब आपको बनानी है तो इसे बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच जौ का आटा या फिर जो बारीक पिसा जौ होता है वो आपको लेना है। साथ ही लगभग 1 से 1.5 कप के करीब आपको दूध लेना है स्वाद के अनुसार। इसके बाद शहद या अन्य जो मिठास या थोड़ी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप मीठे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शहद के अलावा आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेना है थोड़ी सी दालचीनी और कुछ कटे हुए जो छोटे छोटे बादाम होते हैं, और साथ ही अखरोट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों 1 या 2 आपको लेना है खजूर। और साथ ही जब ये सारी सामग्रियां आपके पास आ जाएं तो आपको शुरू करना है तैयारी कि कैसे आप बनाएंगे

इस रेसिपी यानी तालबीना को। दोस्तों सबसे पहले जौ जो है उसे तैयार करना होगा आपको। अगर आपके पास जौ है वो आटे के रूप में है तो ठीक है, तो आपका आप इसका सीधे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास जौ जो है वो साबुत यानी कि पूरे दानों की तरह है तो आपको इसे साफ करके बारीक पीसना होगा। इसके बाद तालबीना के लिए आटा जो है वो जितना बारीक पिसा होगा उसकी बनावट उतनी ही मुलायम यानी कि सॉफ्ट भी रहेगी। साथ ही दूध और जौ का मिश्रण आपको एक पैन में डालना होगा। अब इसमें धीरे धीरे जौ का आटा डालते हुए इसे आपको लगातार जो है चलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी। साथ ही ये होने के बाद यानी कि मिक्सचर बनाने के बाद आप गांठें न बने इसके लिए आपको लगातार इसको मिक्स करना होगा। फिर गैस जो है उसको धीमे से मध्यम आंच पर आपको रखना है और फिर पकाने के लिए आपको करना होगा मिश्रण को धीरे धीरे जो लगातार चलाते रहना होगा। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ मिनटों में जौ का जो दूध है वो मतलब आटा जो है वो दूध को सोखना शुरू कर देगा और मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। इसके बाद जो इसकी बनावट है वो हल्के दलिये जैसी होने लगेगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि तालबीना जो है वो ऑलरेडी तैयार होने लगी है। इसके बाद बहुत ज़्यादा आप इसको गाढ़ा न करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने से इसका स्वाद खराब भी हो सकता है। तालबीना की खासियत ये है कि ये मुलायम होता है और आसानी से खाई जाने वाली होती है। इसके बाद अगर बात हो मिठास की यानी मीठी चीज़ आप अगर इसमें डालना चाहते हैं तो आपको गैस बंद कर देना है थोड़ा ठंडा होने पर। फिर स्वाद के अनुसार आपको इसमें डालना है शहद या फिर पाउडर जो किया हुआ जो गुड़ होता है उसे भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि शहद जो है बहुत गर्म मिश्रण में डालने से आपकी जो रेसिपी है आप जो बना रहे हैं वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें जो शहद है उसे डाल सकते हैं। अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी पिसी हुई जो गुड़ है उसको। साथ ही तालबीना को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें डालनी होती है। तालबीना का जो बेस है वो बहुत ही सरल है, सिंपल है, लेकिन आप इसे अलग अलग तरीकों से स्वादिष्ट बना सकते हैं। जैसे खजूर जो है उसे डालकर आप इससे खजूर वाली तालबीना बना सकते हैं, या फिर कटे हुए जो खजूर हैं उसको आप अच्छे से अगर इसमें डाल देंगे तो इसकी जो स्वीटनिंग है यानी कि आप इसमें शहद या फिर गुड़ अगर ना भी डालें तो भी आप इसे आराम से खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट या फिर किशमिश भी डाल सकते हैं। साथ ही दालचीनी अगर आप लेकर बनाना चाह रहे हैं इस रेसिपी को तो आपको खुशबू के लिए जो है दालचीनी छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर जो आपकी तालबीना है वो रेडी हो जाएगी। वैसे ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑप्शनल है, बेस जो मेन है आपने अगर वो तैयार कर लिया और उसमें आप अगर चाहें तो या तो आप खजूर के साथ बना सकते हैं तालबीना को या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ और या फिर आप दालचीनी के साथ बना सकते हैं इस खूबसूरत सी रेसिपी को। दोस्तों अगर आपको फल बहुत पसंद है यानी फ्रूट्स बहुत पसंद हैं तो आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और ये एक पारंपरिक व्यंजन है तो स्वाद के अनुसार आप अपने लिए कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स यानी फल भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका स्वाद जो है ये बहुत ही निखर कर सामने आएगा।

वेल फ्रेंड्स, इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है फिलहाल 5:52 और समय हो चला है कि आपसे लूं विदा। और फिलहाल जो है अगला गीत सुनते सुनते चलेंगे अगले कार्यक्रम की ओर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग

सरल 6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। स्टूडियो की घड़ी में समय 6:11:25 और आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम वार्ता के अंतर्गत आज का विशेष विशेष विषय। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये कार्यक्रम और चैनल आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस कार्यक्रम को 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। वार्ता के अंतर्गत आज हम विशेष जो विषय लेकर आए हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बेहद ही खास दिन है और ये खास दिन आज यानी 21 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि में अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। दोस्तों ये खास दिवस है उन लोगों को याद करने के लिए जिन्होंने आतंकवाद से पीड़ित होकर अपनी या अपने जो अपने परिजनों की जो है वो जान खोई है। तो दोस्तों आपको बता दें आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात कर रहे हैं जो याद दिलाता है कि आतंकवाद सबसे बड़ी जो इसकी कीमत है वो कौन चुकाता है। वो कीमत चुकाते हैं वे निर्दोष लोग जिनकी किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं होता है, वे परिवार जिनकी खुशियां एक पल में बिखर जाती हैं, वे बच्चे जिनके बचपन पर भय का साया पड़ जाता है और साथ ही आपको दोस्तों बता दें वे लोग जो कि अपनों को खोने के बाद भी जीवन को फिर से संभालने की कोशिश में लगे रहते हैं। हर उस इंसान के लिए आज का ये विशेष दिवस यानी 21 अगस्त के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये दिन केवल उन लोगों को याद करने का अवसर नहीं जिन्होंने आतंकवादी हिंसा में अपनों की जान गंवाई है, बल्कि ये दिन उन सभी पीड़ितों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन भी है जिन्होंने आतंकवाद के कारण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या फिर भावात्मक पीड़ाओं को झेला है। आतंकवाद केवल एक व्यक्ति पर जो किया गया हमला है वो नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पड़ता है हर उस व्यक्ति पर जो कि उस विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों एक व्यक्ति के मृत्यु के साथ एक परिवार का जो सदस्य है वो अपने आप जब खो जाता है तो उस पूरे परिवार में मातम छा जाता है। एक बच्चे का के माता पिता से बिछड़ना साथ ही उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है हर तरह का कोई भी इस प्रकार का विषय। तो एक घायल व्यक्ति को लंबे समय तक उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता होती है और समाज के भीतर भी भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए आतंकवाद को केवल सुरक्षा की समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक मानवीय

समस्या भी है। इसके केंद्र में है हर इंसान और उसके अधिकार, साथ ही उसका सम्मान और उसकी गरिमा भी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस के माध्यम से आतंकवाद के पीड़ितों की आवाज को सामने लाने और उनके अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। अक्सर जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो हमारा ध्यान घटना, हमले और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन इस पूरे घटना चक्र के बीच सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? तो दोस्तों, वो लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं जो हैं पीड़ित, वे लोग जिनका जीवन बदल गया। इस दिवस का संदेश है कि पीड़ितों को केवल आंकड़ों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, हर नाम के पीछे एक परिवार है, हर परिवार के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी में हमें ये याद दिलाती है कहानी कि हिंसा का रास्ता मानवता को कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाता है जहां पर वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। दोस्तों, किसी भी पीड़ित के विषय में अगर हम याद करना चाहें तो वो घटना हमें याद आती है जिस घटना से वो व्यक्ति हुआ था पीड़ित। ये भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प भी है, और साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि कहीं ना कहीं हिंसा को स्वीकार न करना हमारे मन में इन्हीं घटनाओं को देखकर आता है। दोस्तों, हम नफरत को सामान्य नहीं बनने देंगे, ये भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जो है छोड़ जाता है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो समाज में सुरक्षा को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है, और आतंकवाद के जरिए साधारण जनता या फिर साधारण लोग जो मासूम होते हैं उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समाज के हर हिस्से की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार, बच्चों के साथ साथ आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, भले ही वो डायरेक्ट उस व्यक्ति से न जुड़े हों जो आतंकवाद का शिकार हो गया, बल्कि फिर भी जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप में उसे प्रभावित जरूर करती है। आज की दुनिया में जो युवा हैं वो भविष्य हैं हमारे देश का, लेकिन साथ ही साथ वे वर्तमान की भी महत्वपूर्ण शक्ति हैं। युवाओं के हाथ में तकनीक भी है और उनके पास संवाद की क्षमता भी, उनके पास समाज को प्रभावित करने की ताकत भी है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना की तस्वीर या वीडियो जो है वो बिना सोचे समझे कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए ये और भी अधिक पीड़ा पैदा करने वाला होता है कि वो अपने किसी परिजन को किसी आतंकवादी हमले का हिस्सा बनते देख सकें। दोस्तों, आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी एक देश, धर्म या क्षेत्र या समुदाय की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, और इसका मुकाबला भी पूरी मानवता को मिलकर करना होगा। पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना आतंकवादी हिंसा के बाद अक्सर सुर्खियों में कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन पीड़ितों के परिवार का दर्द लंबे समय तक, या यूं कह सकते हैं कि ताउम्र बना रहता है। इसीलिए हमारा समर्थन केवल घटना के तुरंत बाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ये भी समझना चाहिए कि लंबे समय तक एक परिवार उस घटना को कभी भी शायद न भूल सके। शारीरिक चोट से उभरने में भले समय लगता है, लेकिन मानसिक चोट जो होती है उस चोट को उभरने में शायद कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी घटना जिसमें इस प्रकार की कोई चीज़ इन्वॉल्व है उसके प्रति हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनना चाहिए, ताकि जो भी पीड़ितों के परिवार हैं या जो भी पीड़ितों के परिजन हैं उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुँचे हमारे किसी एक्शन, हमारे किसी ऐसी चीज़ की वजह से जिसके कारण वो दुखी हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। तो दोस्तों, ऐसे में आज का दिन विशेष है, और विशेषता हमें ये याद दिलाता है कि हमें उन हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए
जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्रकार की किसी घटना का शिकार हो चुका। फिलहाल आज की वार्ता में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं 297

6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दोस्तों अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

0: कार्यं निर्वहतीति एतत् कठिनतमेषु कर्तव्येषु अन्यतमम् इति सः उक्तवान् अपि च सः उल्लिखत् यत् सिलिगुडी मार्गस्य महत्त्वम् अवगन्तुं केन्द्रसर्वकारेण अस्मिन् प्रदेशे निरीक्षणं प्रवर्धितम् अस्तीति
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है मित्रों ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए
0: प्रियाः श्रोतारः संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति अद्य दूरसंचार सूचना संचार तंत्रज्ञान क्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजील देशौ सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अकुरुताम् सामाजिक प्रसार माध्यमे दूरसंचार विभागः अवदत् यत् एषा सन्धिः डिजिटल नवान्वेषणस्य प्रगत्या सह डिजिटल आधारिक संरचनायाः सुदृढीकरणं च करिष्यतीति उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम् सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-2000 मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेशस्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधिस्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्ति वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोग दृढ़ीकर्तुं च भारत देश से प्रतिबद्धताया विषय बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदय नेतृत्व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थाया सुदृढ़ीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल और चंदा की डोली लेकर हाजिर था सोनू निगम की आवाज में ये गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलगुलशन में, जी हाँ, मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे इस गीत को, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे पिया बसंती रे उस्ताद सुल्तान खान के साथ चित्रा की आवाज में कार्यक्रम गुलगुलशन के अंतर्गत एक के बाद एक बेहतरीन तरानों के नजराने कार्यक्रम गुलगुलशन में आप सुनेंगे।

0: ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है, अर्ज किया है रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, बहुत खूब,
0: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल।

दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत सी गज़ल को, और आपको बता दें कि ये जो गज़ल थी, इस गज़ल में आवाज़ थी जगजीत सिंह के साथ चित्र

सिंह की और विनोद सहगल की, और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों, ये जो आपने अभी गज़ल सुनी, इस गज़ल के ठीक उस पार अगली जो गज़ल है वो कर रही है आपका इंतज़ार। लेकिन इस गज़ल को सुनते सुनते फ़िलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम में मैं यानी आपकी दोस्त और होस्ट देविका लूंगी आपसे विदा। और फिलहाल चलते चलते इस गज़ल को सुनते हैं, और गज़ल के ठीक उस पार ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर 7:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश, और फिर 7:10 पर आप सुनेंगे नज़रुल गीति। तो दोस्तों, इन सभी कार्यक्रमों के बाद एक बार फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी 7:30 पर कार्यक्रम दर्पण में। फिलहाल कार्यक्रम गुलगुलशन में मिश्रित गीत संगीत के इस कार्यक्रम में मैं यानी आपकी दोस्त और होस्ट देविका लेती हूँ आपसे विदा। और चलते चलते चित्रा सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं इश्क फना का नाम है।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:31 और 35 सेकंड। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, और आप सभी के लिए शुरू हो चुका है कार्यक्रम जिसका नाम है दर्पण। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त और होस्ट देविका। और सबसे पहले दर्पण में प्रस्तुत है आप सभी के लिए एक नजर। जी हाँ दोस्तों, एक नजर के अंतर्गत हम बातें करते हैं एक खास विषय पर, और आज एक नहीं बल्कि दो दो खास विषय हैं हमारे पास। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज पहला विषय क्या है। आज है 21 अगस्त और प्रतिवर्ष हर वर्ष 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी लोगों को याद करने और श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों, अपने घरों या अपने सामान्य जीवन को खोया है। आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति का स्थान को एक स्थान या फिर किसी जगह को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव परिवारों, समुदायों और पूरे समाज पर पड़ सकता है। किसी प्रियजन को खोने का दुख, भय और असुरक्षा की भावना लंबे समय तक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए ये दिवस एक शोक व्यक्त करने के साथ साथ पीड़ितों के सम्मान और उनके अधिकारों और उनकी गरिमा को याद करने का दिन भी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को इसलिए स्थापित किया ताकि आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंचाई जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों की पीड़ा और उनके अनुभवों को भुलाया न जाए। आतंकवाद के पीड़ितों में केवल वो लोग नहीं शामिल होते हैं जो किसी हमले में प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से रहते हैं, बल्कि उनके पूरे परिवार, उनके मित्र, उनके समुदाय के सभी लोग इस प्रभाव से गुजरते हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, साथ ही उनके परिवार के जो उनके अपने हैं उनके प्रति भी प्रेम, सहानुभूति आदि की भावना अपने मन में रखें। तो ऐसे में ऐसे दिवस को हम बहुत ही शालीनता के साथ मनाना चाहिए। और दोस्तों ये दिवस विशेष है क्योंकि ये दिवस कहीं ना कहीं मानवता की भावना को प्रभावित करता है, मानवता की भावना को प्रचारित करता है।

दोस्तों आज का दिन और भी एक मायने में बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन 1915 में जन्म हुआ था एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर पूरे विश्व में अपनी जगह बनाई। दोस्तों 21 अगस्त 1915 को जन्म हुआ था उर्दू साहित्य के उस महान लेखिका का, जिसने अपने शब्दों से समाज की उन सच्चाइयों को सामने रखा जिस पर बात करना उस दौर में आसान नहीं था। उनका नाम था इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था और उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां शिक्षा और पढ़ने लिखने का माहौल था। बचपन से ही इस्मत के भीतर सवाल पूछने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी। उस समय लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बंदिशें थीं, लेकिन इस्मत ने इन सीमाओं को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर अध्यापन के क्षेत्र से भी जुड़ गईं। लेकिन उसकी असली पहचान बनी उनकी बेबाक लेखनी से। इस्मत चुगताई ने अपने साहित्य में महिलाओं के जीवन, उनके सपनों, उनकी परेशानियों, रिश्तों और समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर खुलकर लिखा। उन्होंने उन विषयों को अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया।

जिन पर उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा जाता था। उनकी सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है लिहाफ, और 1942 में प्रकाशित इस कहानी ने साहित्य की दुनिया में हलचल मचा दी थी। कहानी में महिलाओं की भावात्मकता और उनके सामाजिक दुनिया को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया गया जो उस समय बेहद साहसिक माना गया। लिहाफ को लेकर इस चुगदाई पर अश्लील का मुकदमा भी भले चला था, लेकिन अदालत का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बिल्कुल समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने विषय को समझाया और उस विषय को समझाने के बाद जो उनकी परिस्थिति थी वो बेटर भी हुई, और साथ ही उनकी लेखनी में चारों ओर उनकी लेखनी को पसंद किया गया। दोस्तों, उनकी भाषा सरल, जीवंत और बातचीत जैसी थी जिससे भाषा है वो बनावटी नहीं लगती है। फिलहाल दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय जो हो चला है, बता दूं आपको, 7:36 और ये 37 मिनट बस हो ही गए। आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये गीत अरिजीत सिंह के साथ अरमान खान की आवाज में। आइए सुनते हैं फिल्म धुरंधर से ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के साथ अरमान खान की आवाज़ में इस गीत को 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। दोस्तों आज के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है विधि विधान और समाधान और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के विषय के बारे में आपको बता दूं।

दोस्तों, विधि विधान और समाधान के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में। दोस्तों, भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित हुआ था और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 और 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे। दोस्तों, नियमों में प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रावधान है और आपको बता दें कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारी डिजिटल पहचान और निजता की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बातें करेंगे इस विशेष विषय पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज का जो ये विषय है ये हमारी जिंदगी से लगभग हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, ऑनलाइन समाचार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, साथ ही डिजिटल पेमेंट भी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, साथ ही ऐप्स पर अपनी जानकारी दर्ज भी करते हैं और कई बार सरकारी सेवाओं का लाभ भी डिजिटल माध्यम से लेते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारी डिजिटल पहचान कितनी सुरक्षित है? दोस्तों, हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, पहचान से जुड़ी सारी जानकारी, ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित डेटा, आखिर ये सब जमा होता है कहीं ना कहीं और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और अगर हम अपनी हमारी निजी जानकारी जो है उसे गलत इस्तेमाल करने तक पहुंचा दें, या यूं कहें कि आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं ऐसे लोगों तक पहुंचा दें जो डिजिटल फ्रॉड से जुड़े हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे अधिकार भी हैं बहुत सारे जो हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे 2023 में।

तो आपको बता दें कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का जो ये कानून है, ये व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है कि एक तरफ व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखा जाए तो दूसरी तरफ वैध उद्देश्यों के लिए डेटा के इस्तेमाल की जरूरत भी पूरी हो सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहली और बहुत ही आसान भाषा में कि आखिर ये डेटा होता क्या है। जब हम किसी वेबसाइट पर, ऐप पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, पता आदि जो चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं, जानकारी के रूप में देते हैं, तो ये हमारे बारे में जो जानकारी है वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। डिजिटल दुनिया में ये जानकारी जो है वो एक तरह से डेटा का रूप ले लेती है। और मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना एक अकाउंट बनाया और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि दिया। इसके बाद आपने कोई सामान खरीदा और उस प्लेटफॉर्म के पास आपके बारे में कई तरह की जो डिजिटल जानकारी है वो पहुंच चुकी है। यानी हमारी डिजिटल जिंदगी में डेटा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। और आपको बता दें कि ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको सेव भी करता जाता है। तो आज डिजिटल सेवाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, सरकारी सेवाओं को लेकर बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी और मनोरंजन तक हमारी जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। ये कानून जो है इसे बनाया गया इसके बाद इसके कार्यान्वयन का विस्तार देने के लिए 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो है उसे अधिसूचित किए गए और नियमों में अलग अलग प्रावधानों को अलग अलग समय पर लागू करने की व्यवस्था भी रखी गई ताकि संस्थानों को आवश्यक तैयारी और अनुपालन के लिए समय मिल सके। कानून में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है व्यक्ति के अधिकार के विषय में। इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से जुड़े जो अधिकार हैं वो हमें दिलाए जाते हैं। साथ ही उसे डेटा प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं इसको अगर कोई इससे छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो सरकारी नियमों के अनुसार आप उसके विरोध में आप एक्शन भी ले सकते हैं। जब किसी व्यक्ति से उसके व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना ली जाती है तो उस व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि उसका डेटा किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ लंबी और मुश्किल भाषा में नियम और जो चीज़ें हैं उनको समझना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि साथ ही हमें ये भी जानना है कि हमारी जो डेटा है वो किन लोगों तक पहुंच रही है। इसीलिए बहुत सारे जो नियम हैं उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल बच्चों के हाथों में भी जो है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आदि चूँकि पहुंच चुका है तो बच्चों के डेटा पर भी विशेष ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, जो एजुकेशनल ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट पर अलग अलग तरह की सेवाओं से जुड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि उन्हें कई जगहों पर चीज़ों का पता नहीं होता है। दोस्तों इसका उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि बच्चों से जुड़े डेटा जो है उसका इस्तेमाल किसी तरीके से पूरी रूप में ना किया जाए। तो दोस्तों फिलहाल आज जो बातें चल रही हैं वो है डिजिटल डेटाज के विषय में, क्योंकि आज के कार्यक्रम विधि विधान और समाधान के अंतर्गत जो हमारा विशेष विषय है उस विषय में हम बातें कर रहे हैं इसी खास विषय पर, यानी कि वो एक्ट जो हमारे डिजिटल डेटा से जुड़ा हुआ है। तो विधि विधान और समाधान के अंतर्गत बातें हो रही हैं द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में। आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो चला है उसके अनुसार अब आपसे लेना है मुझे विदा। चलते चलते आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना। आइए सुनते हैं जुबीन नौटियाल की आवाज में आज के कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम सैयारा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान

0: से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
1: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
2: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
3: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
4: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

0: इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the News 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India

0: ঋতুভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর প্রস্তুতির বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বুধবারের গণ্ডগোলের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। NSOU এর প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর শুভ শঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে 5 সদস্যের ওই কমিটিতে রয়েছেন বাবা সাহেব আম্বেদকার এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর অরুণাশিস গোস্বামী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC নির্দেশক প্রফেসর সৌমেন্দু চ্যাটার্জি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো অ্যানালিস্ট ডক্টর সুমন্ত জানা এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডক্টর আবুল হাসনাত। এদিকে আজও যাদবপুরে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি একটি জমায়েতের আয়োজন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে প্রতিবাদ মিছিল যায় ঢাকুরিয়ার পঞ্চাননতলা পর্যন্ত, সেখান থেকে মিছিল আবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ফিরে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেটের যে প্রতীক গতকাল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তা আজ সারাই করে পুনরায় ওই স্থানেই লাগানো হয়। কলকাতায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা পুরসভা গঠিত যৌথ তদন্তকারী দল শহর কলকাতায় হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে অভিযান চালাচ্ছে। জানা গেছে, সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের দায়ে শহর জুড়ে এখনও পর্যন্ত 30টি হোটেলকে বন্ধের নোটিশ পাঠিয়েছে পুরসভা। এর পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিয়ে শহরের 17টি হোটেলকে দমকলের তরফ থেকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। মিশন শক্তি সম্বল প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ সেন্টার, মহিলা হেল্পলাইন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং নারী আদালত রয়েছে এবং 2022 সালের 1 এপ্রিল চালু হওয়া সংকল্প হাব ফর এম্পাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন এই উদ্যোগ জাতীয়, রাজ্য এবং জেলা স্তরে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একক জানালা হিসেবে কাজ করছে বলে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী জানিয়েছেন। বর্তমানে দেশে 36টি রাজ্য হাব এবং 765টি জেলা হাব কার্যকর রয়েছে বলেও তিনি জানান। কলকাতায় আজ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী। ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। প্রধান নদীগুলোর জলের স্তর কমতে শুরু করলেও রাজ্যের 7টি জেলায় 13 লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে। বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দুঝড়, কেন্দ্রপাড়া এবং সুন্দরগড় এই জেলাগুলোর 1,700রও বেশি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগামীকাল পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এছাড়া চলতি মাসের 24 তারিখ পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে ভারী বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ ঢাকার বঙ্গভবনে বাংলাদেশের 23তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরেকবার। দিল্লিতে ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, গত 10 বছরে 25 কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, চীনের মূল্যবৃদ্ধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে, তবে এই দাম বৃদ্ধি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে ভবতারিণী। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों के सस्त्रीकरण की चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्ज्वल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए आर्थिक हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब पिछले सरकारों के उत्पादन से दंड मॉडल से निकलकर उत्पादन से प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों का लाइसेंस राज बेरोजगारी बढ़ाने का माध्यम बना, जबकि उनकी सरकार की पीएलआई योजना नए अवसर पैदा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्त धारा की, सप्त शक्तियों की बात की है, और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का हमेशा साझा भविष्य की भावना में विश्वास रहा है। इसी कारण भारत की G20 अध्यक्षता का मार्गदर्शक सिद्धांत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट हुआ है कि हर देश का भविष्य दूसरे देशों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स ITC बैठक से इतर हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के सहयोग में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: बलूच नेशनल मूवमेंट ने नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन और रैली आयोजित कर पाकिस्तान वायुसेना द्वारा बलूचिस्तान प्रांत के सुराब जिले में हाल में किए गए हवाई हमलों की निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की खबर है। बलूच नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ता ने एम्स्टर्डम में रैली को संबोधित करते हुए सुराब हमलों को गंभीर मानवीय त्रासदी बताया और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से सुराब में हुई बमबारी का तत्काल संज्ञान लेने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने अमेरिका की किसी भी नई धमकी का कड़ा और निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टार मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की सेनाएं थल, जल, वायु, वायु रक्षा और साइबर क्षेत्र में पूरी तरह तैयार है। ये चेतावनी अमेरिका की ओर से ईरान पर नए और कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने की योजना के बाद आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ऐसी नीतियों से ईरान में अमेरिका के प्रति नाराजगी और शत्रुता बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा

0: और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसर कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। श्री फखरुल इस्लाम आलमगीर कल जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन द्वारा समर्थित ओली अहमद को हराकर राष्ट्रपति चुने गए। तिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जियाई फैन और झांग शुजियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की और ये मुकाबला 16-21, 21-15, 21-13 से जीत लिया। इस जीत ने 2011 के बाद से महिला डबल्स में भारत का पहला मेडल भी पक्का कर दिया। 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक वृद्धि और संसाधनों का सत्रीकरण चिंताओं के बीच भारत विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत और ब्राजील ने डिजिटल नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बलूच समूह ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। ईरान ने अमेरिका के किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. India and Brazil sign MOU to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Baloch Group condemns Pakistani airstrikes in Balochistan, calls for international probe. Iran warns of strong response to any new threats from the United States. And in badminton, Indian duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand advanced to women's doubles semi-finals of BWF World Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes

an occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne.

0: let there be love.
1: You were listening to the program From Me to You, the West Music Program of the Sanchayata Channel of Akashbani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters corresponding to 1008 kilohertz. Please stand by for the news to be relayed shortly from the Delhi station.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम

0: नेपाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. Talking about the seven powers representing seven key streams which he spoke about from the Red Fort, the Prime Minister highlighted that seven such sectors include manufacturing power, agriculture and food processing, technology and innovation, and the green and blue economies on which India is placing immense focus. He said India is currently undertaking next generation reforms at the policy level to secure future, and the government is implementing reforms in governance and ease of living. He said reform is not a compulsion as it is government's commitment and conviction. The Prime Minister highlighted that the rapid development and swift reforms taking place in India today because there is political stability and continuity in the government's policies. Union Home Minister Amit Shah has reiterated that the zero tolerance policy against illegal immigrants will continue and the detect, delete and deport process will be strictly followed. He said the government's commitment to deport every illegal immigrant from the country is utmost priority, adding that demographic change will be strictly stopped. The Home Minister was addressing a gathering in Siliguri, West Bengal today after inauguration.